0: क्या हेयर स्टाइल यार
1: अन्ना सुपर अन्ना कंटिन्यू कंटिन्यू
2: That is Devi Sri Prasad's mandolin.